0: इन्टरनेट, गेट कनेक्टेड, स्टे कनेक्टेड।
1: नयाँ जडानको लागि सम्पर्क 9028-13424 र 9855-14175।
2: शुक्ला गण्डकी एफएम 97.6।
3: शुक्ला गण्डकी टाइम चेक।
4: यति बेला दिउँसोको ठिक 1 बज्यो।

मौसम अदाए ब्यूटीफुल है, जानती हूँ मैं तुझ तो कितना ब्लडी फुल है।

0: वास्तवी आजिमी देशले परिस्थिति ठङ्गी टुण्ड विदेश मुहाङ्गा न मजुनी आपा शैक्षिक बेरोजगारी डु ब्याचलर यहाँ चु ल्याम ल्यासेटा न हिङार य जागिर लुकेटा न ठाकु ड माङबा मिसा मस्त टोटाली वानटाए मन मरु खोजी नि सकैटा मखुले
1: ख
0: का छिटा आपा आपा सुभा मिकु मिकु हप्ताए ठङ्गी टु ज्याज न छिटा झ्या मान्न है
1: आजिटा थु थौ मेघ यङ्याटा जुन शुक्ला गण्डकी एफएमए निम्तो बिउ खानजी आपटी आभारी द्या बाजु ज्ञानारायण प्रति ठो मेघ सकसे सकसे थिनेमा ठो रेडियो ठो ज्या सानेमा एफएम थोइ लागि एक एक शुभाय
0: आतले छिपुसुङ अरिदेव न्याय पूजा सेवाकोष दुलगणा साधारण सभा सम्बन्धी खाङ यहाँडिल म्यान यहाँडिल म्याय रचनाकार ए खान यहाँडिल मेको हप्ताए ठङ्गेटुङ खाँकाली वेगा सकसिंह बोनी च्याउ बजे शुक्ला गण्डी एफएम गुनेको थोप्ला खु ङ्याली साथ भेट इनप याजाङ छिपुङ सकसटा एक एक शुभाया यहाँ भ्या ल्याटा जागा जेर्नु जिमी भ्या मकेमा जोजलपा शुभाया।